नानक गादी बड़ियाई, सगरे जग की बर गुरियाई, सो हम देन उठत इस समय जिसके अगे त्रिलोकी नमे, जिदे अगे सारा त्रिलोक नमस्कार करदा, असी ते ओ गद्दी इनू देन लगे सां। भाव कहण दा साध संगत गुरु हरगोबिंद साहिब दी जपजी साहिब दी सुनाउण बदले चित जोड़ के इतनी प्रसन्नता, पर की किया, अब भी धन जन्म भव पयो, जन्म मरण दुख सब मिट गयो, कि अजे भी तेरा जन्म ताने, तेरा जन्म मरण सारा ए भी मिट जाएगा, करियो मनोरथ जो अब जैसे, सो लीजो नै बिलमो कैसे, जेड़ा मनोरथ बनाया हुण ए मनोरथ तेरा भी पूरा होएगा, कह कर सो घोड़ा मंगवायो, सुंदर जिस पर जीन सुहायो, आख सतनाम, ओहो घोड़ा सुंदर जीन वाला महाराज जी ने मंगवाया। सूरज प्रकाश दी पंक्ति है, सवा लाख की कीमत जाही, होए प्रसन्न बख्शत है ताई, प्रसन्न होके ओ घोड़ा बख्शिया है, धन गुरु हरगोबिंद जी ने। कवि किवें लिख रहा है, आओ बड़े

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख समय दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है अपने सीपा सलार नूं हुकम दिता भई तू कश्मीर नूं जा रहे हैं जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उस नूं भी शोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो तृतीय मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नूं पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुली समेत स्वाह हो गया इस शुकराने वजो हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कहीं न पहुंचा।

स्थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगीधर पाछा काल दी गति अगात कथन करते हैं। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहब ते ऊने साहब के विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज के ऊपर, उथे बैठ के काल का कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीन लई, ज्यो पानी पीन लगता है तां इस दे मुख विच मच्छी फस जांदी है। दम रुक गया, ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा है बाज ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई। ते ज्यो इस मच्छी नू चपट मारन लई बाज आया तां ओ भी मिर्ग दे शिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने जल कहां, डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखा है कि कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण तै चार, चार मरण ते शै मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी। ज्यो निशाना मारिया मिर्गनी नू, ता मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसके बच्चा होण वाला सी क्योंकि गर्भवती सी, बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी उथे नेड़े ही सप निकलिया, जिसने शिकारी नू दस्या, शिकारी नू दस्या, ते शिकारी ने झट तलवार कढ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता, ते आप भी उसे वेले शरीर छड गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार, हुण चार हो गए, इना चौहां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घर वाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया, हुण मेरा जीवन त्रिग है, वो भी उथे ही टकरा मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखी वेख रहे सन, ये शेह दी गिनती कीती है बाणी दे विच। मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न ते पेट दा बच्चा, ये चारे पुरख हन। शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ये दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया, तां अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई। इस वेले शिकारी ने खिच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नू जिथे फंदक खड़ोता सी ना, उस जगह तो सप निकलिया,
ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਝੱਟ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ,

0: मत्ते रंगर दा सिर वड़ के नेजे ते टंग लिया ते बीकानेर दी धरती वल नूं चाले पा दित्ती। बीकानेर पहुंच के सिंघां ने मत्ते रंगर दा सिर जथेदार बाबा बुढ़ा सिंह जी दे चरणां विच पेश कर दिता। पंथ ने खुशी दे जयकारे छड्डे, बोले सो निहाल सत श्री अकाल दे जयकारा नाल आसमान गूंज उठिया। गुरु खालसा जी, जदों जदों भी जालमां ने जुल्म ढाया है ता सिंघां ने भी अगों इट दा जवाब पत्थर नाल ही दिता है, क्योंकि जे जुल्म करना पाप है ता जुल्म सह लेना महापाप है। ऐसे करके कौमां ने जद अक दियां जुल्मां दे फट्टे चक दियां कुर्बानी दे आवे विच तहरीकां ने
1: पक दियां
0: हक लई तलवार उठा हक नबेड़ू हक दियां वार सदा तलवारां दे तलवारां ही ने
1: डक दियां।
0: जदों गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बादशाह औरंगजेब नूं जफरनामा यानी जित दी चिट्ठी लिख के भेजी सी तां उस विच एक करड़ी हिदायत कीती सी, चुंकार अज हमा हील ते दर गुजस हलाल अस्त बुरदन व
1: शमशीर दस्त।
0: जदों सारे हिलियां तो गल लंघ जावे तां उस वक्त तलवार चुक लेनी जायज है। इसे करके सिंह सूर में मर्द दलेर जड़े भाजी मोड़न हमेशा जानदे ने सिर रखदे नहीं उधार योदे सदा अणख दी जिंदगी
1: मानदे ने।
0: गुरु खालसा जी, ऐसी पर उपकारी अणखी खालसे दा इतिहास जालमां नूं सब सिखाउण वास्ते जदों भी किते सिंघां ने खून डोलिया तां इस ने जुग नूं ही पलटा के रख दिता अते एहो जे मर जीवड़े सिंघां दी याद विच इक नगमा अकाल अकैडमी बड़ू साहिब दियां बीबियां दा ढाडी जत्था आपदी सेवा।

लगी और न यही महात्म में अवतारी उजागिर यान कियो। तिनके दुख कोटिक दूर गे मथुरा जी।

सुन बेद बिरंत विचार रहो हर जप न छाडो एक करी। मथुरा गण को प्रभ दीन दयाल है संगत श्री।

आप साजियां ने आपे ही दम खलोवा आपे पट्टी कलमिया आप लिखन हारा हुआ सब

अनसाद पार करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चों वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वह भी प्रवान करनी तो आओ हम अन

दो चीजां ने, एक चंगियाई एक बुरियाई। चंगियाईयां कठियां करनियां होन तां कुछ कठिनाइयां दा सामना करना पैंदा है। चंगियाईयां मिलदियां बड़ियां औखियां ने, बुरियाईयां कठियां करनियां होन तुहानूं दूर नहीं जाना पएगा, तुहाडे कदमां दे नाल ही बुरियाईयां हन। चंगियाईयां नूं एकत्र करन वास्ते तुहानूं बहुत सारा जिंदगी दा लंबा सफर करना पएगा। तो बुरियाईयां तां बिल्कुल नाल ने, जदों मर्जी कठियां कर लो। हसूर ने कहना कि बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। ते जिस दे पल्ले चंगियाईयां होण उहदे कोल सिदक आ जांदा है, ते कई वार अकाल पुरख उहदे सिदक दी परख भी करदा है। एक वार रसना पवित्र करो ते आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहिगुरु। ते जिन्ना नहीं आख्या एक वारी फिर आखो प्यार नाल सतनाम श्री। सिदक दी परख है ना, मेरी पीरी दे मालिक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जागती जोत दो तलवारां पहन के बहुत मिठा बोलते सन। हजूर संगतां नूं उपदेश दे रहे ने, बहुत सारियां संगतां दर्शन करदियां ने, ते जिहड़ा भी दर्शन करदा है होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों झट्टी है, ते सारे पढ़ो तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी। जिथे होर सिख सेवा करदे ने उथे एक सिख जिसका नाम भाई हरपाल है, वह भी सेवा करदा है। सेवा करदियां करदियां अज कन्नां विच एक आवाज आई,